0: हजुर, हामी कहाँ काँचो कपडा, फेन्सी, सिरक डसना सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर अब्दुल कलाम सिद्दिकी, भित्री बजार आफ्नै भवनमा, भाग्यश्वरी एग्रोभेट सँगै सटेको। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98098 43 400।
1: रेडियो होलेरी एफएम 102.5 मेगाहर्ज।

दुखी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनीषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर।

घरती मगर रोहिना घरती मगर पनातीहरू गणेश घरती मगर सुशान घरती मगर स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर नाती नातिनीहरू दान बहादुर पुन मगर सुखराम पुन मगर बेलु पुन मगर धाती बुढा मगर देउर तथा देउरानीहरू स्वर्गीय महासुर घरती मगर हिम्ती घरती मगर स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर स्वर्गीय जेमराज घरती मगर स्वर्गीय साबित्रा घरती मगर भतिजीहरू दुमा पुन मगर खिमी पुन मगर मना पुन मगर तारामती बहगरी विष्णु घरती मगर कृष्णी पुन मगर देवमती घरती मगर पुष्पा पुन मगर बबिता घरती मगर निमकली पुन मगर भतिजा भतिजीहरू खिम बहादुर घरती मगर खम्मी घरती मगर बल बहादुर घरती मगर देवमाया घरती मगर बालकुमारी पुन घरती मगर रविन्द्र घरती मगर सन्ध्या पुन घरती मगर भीम बहादुर घरती मगर वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका।

यी घरती मगरको यही मिति 2083 साल भाद्र 22 गतेका दिन 91 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनले हामी अत्यन्तै दुखी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू, दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू, सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनिषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर, राजमी घरती मगर, एमसरी रोका मगर, पूर्णिमा पुन मगर, चुनामती घरती मगर, रेजिना घरती मगर, रोहिना घरती मगर, पनातीहरू, गणेश घरती मगर, सुशान घरती मगर, स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर, स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर, नाति नातिनीहरू, दान बहादुर पुन मगर, सुखराम पुन मगर, बेलु पुन मगर, धाती बुढा मगर, देउर तथा देउरानीहरू, स्वर्गीय महासुर घरती मगर, हिम्ती घरती मगर, स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर, स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर, स्वर्गीय जिमराज घरती मगर, स्वर्गीय सावित्रा घरती मगर, भतिजीहरू, दुमा पुन मगर, खिमी पुन मगर, मना पुन मगर, तारामती बहगरी, विष्णु घरती मगर, कृष्णी पुन मगर, देवमती घरती मगर, पुष्पा पुन मगर, बबिता घरती मगर, निमकली पुन मगर, भतिजा भतिजीहरू, खिम बहादुर घरती मगर, खम्मी घरती मगर, बल बहादुर घरती मगर, देवमाया घरती मगर, बालकुमारी पुन घरती मगर, रविन्द्र घरती मगर, सन्ध्या पुन घरती मगर, भीम बहादुर घरती मगर, वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका

दुखी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनीषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर, राजमी घरती मगर, एमसरी रोका मगर, पूर्णिमा पुन मगर, सुनामती घरती मगर, रेजिना घरती मगर, रोहिना घरती मगर, पनातीहरू गणेश घरती मगर, सुशान घरती मगर, स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर, स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर, नाति नातिनीहरू दान बहादुर पुन मगर, सुखराम पुन मगर, बेलु पुन मगर, धाती बुढा मगर, देउर तथा देउरानीहरू स्वर्गीय महासुर घरती मगर, हिम्ती घरती मगर, स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर, स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर, स्वर्गीय जिमराज घरती मगर, स्वर्गीय साबित्रा घरती मगर, भतिजीहरू दुमा पुन मगर, खिमी पुन मगर, मना पुन मगर, तारामती बह गरी विष्णु घरती मगर, कृष्णी पुन मगर, देवमती घरती मगर, पुष्पा पुन मगर, बबिता घरती मगर, निमकली पुन मगर, भतिजा भतिजीहरू खिम बहादुर घरती मगर, खम्मी घरती मगर, बल बहादुर घरती मगर, देवमाया घरती मगर, बालकुमारी पुन घरती मगर, रविन्द्र घरती मगर, सन्ध्या पुन घरती मगर, भीम बहादुर घरती मगर, वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका।